0: যারা মাছ ধরতে যান আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মৈ মনোজ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर

निषादराज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

0: এখন দিল্লি কেন্দ্রের সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রুয়ন্তাম প্রবাচিকা নিধি ঝা। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं

0: करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module

का संसार एखाने कार जन्म मृत्युर प्रगाढ़ कौतुके हासियो कान्नार सारात्सार।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष

0: जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे।

0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
1: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस

0: टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the Stringent Anti-Crime Bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1

9:10 है इस चूड़ी की घड़ी का समय। आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर्स तथा 1008 किलोहर्ट्ज पर। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शुरू करते हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा। आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ।

9:16 संग है, आप शर्मिष्ठा के सुन रहे हैं बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा को। और फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं एक नया विषय लेकर, जिसे लेकर हम करेंगे बात आज के इसी कार्यक्रम में। एक ऐसी चीज को लेकर बात करूंगी जिसके नाम है आज का दिन। जी हाँ, डेडिकेटेड है आज का दिन उसी एक खास चीज को लेकर, जिसकी बिना बोले

ही आखिर बयां कर देता है वो चीज़ सब कुछ। जी हाँ, खासकर इतिहास की अनगिनत घटनाएं इसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बताऊँ आपको कि आज का दिन आखिर किस नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड रॉक डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। जी हाँ, रॉक यानी कि पत्थर, एक सामान्य सा पत्थर जिसे देखने पर बहुत ज़्यादा खुशी शायद दिल को नहीं होती है, लेकिन यही सामान्य सा दिखने वाला पत्थर, इसके अंदर छिपी हुई है बहुत सी बातें, बहुत से राज। जी हाँ, इतिहास की हर एक छोटी बड़ी बात को अपने अंदर समाये रख सकता है ये पत्थर, जिसे हम बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा एक पत्थर मानकर चलते हैं, लेकिन वाकई में यही साधारण सा दिखने वाला पत्थर बयां कर देता है बहुत कुछ। जी हाँ, तो चलिए इसी दिन को लेकर करेंगे हम बात, और वर्ल्ड रॉक डे पर हमारे देश के उन पत्थरों से बनी इमारतों के बारे में भी बात करूंगी जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। फिलहाल रुक करते हैं फिल्मी गीत की ओर, और उसके बाद तो ढेरों बातें होती ही रहेंगी इसी कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही तो है, जी हाँ, रस सारा, जिसमें बातें भी होती हैं साथ ही साथ गीत संगीत का सिलसिला भी चलता रहता है इसी कार्यक्रम में। फिलहाल अनुराधा पौडवाल।

9:24 बात हो रही थी आज के खास दिन को लेकर, और ये भी बता रही थी कि आज के दिन को आखिर किस तरीके से मनाया जाता है, क्या नाम दिया गया है आज के दिन को। जी हाँ, आज का दिन डेडिकेटेड है उस चीज़ के नाम जो कि भले ही खूबसूरत ना दिखता हो लेकिन उसी चीज़ के अंदर छुपी है ढेरों, जी हाँ हज़ारों वही बातें जिन्हें शायद हम नहीं जानते, जिन्हें टटोलने से इतिहास की कई सारी बातें हमारे सामने आ सकती हैं। वर्ल्ड रॉक डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। जी हाँ, वही रॉक, वही बदसूरत सा पत्थर, शायद, जी हाँ शायद बदसूरत, लेकिन कभी कभार पत्थर भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इतने मनमोहक होते हैं कि एक ही नज़र में हमारा दिल जीत लेते हैं। तो खैर, पत्थर चाहे खूबसूरत हो या फिर बदसूरत, छुपी होती है ढेरों कहानियाँ इसी पत्थर के अंदर। और आज के दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड रॉक डे के तौर पर। अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है और ये दिन पृथ्वी की चट्टानों और उनके भूवैज्ञानिक महत्व को समझने और समझाने के लिए समर्पित है। विश्व रॉक दिवस का महत्व पृथ्वी के निर्माण, मानवीय इतिहास और हमारी तकनीकी प्रगति से जुड़ा हुआ है। ये दिन हमें इन मुख्य लेकिन शक्तिशाली प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

9:35 संग हैं आप शर्मिशा के सुन रहे हैं मैं बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा को और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर जो कि हमारा ऑफिशियल ऐप है इस पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बात हो रही है आज के खास दिन को लेकर यानी कि वर्ल्ड रॉक डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है और उन्हीं पत्थरों उन्हीं चट्टानों को लेकर जो कई बार कितना कुछ कह जाती हैं लेकिन कभी कभार इन चट्टानों की इन पत्थरों की बातें हम समझ नहीं पाते लेकिन अगर गहराई से इनकी बातों को सुना जाए समझा जाए तो पता ये चलता है कि ये जो बदसूरत चट्टाने हैं या फिर पत्थर हैं जो जैसे कि मैं कह रही थी कि पत्थर जो है वो भले ही कितने ही बदसूरत क्यों ना हो लेकिन उनके अंदर उनके पीछे छुपी होती है ढेरों बातें। जी हाँ, जो कि इंसानी इतिहास से जुड़ी हुई है इंसानी कल्चर से जुड़ी हुई ढेरों बातें हमें समझाती है हमें बताती है यही चट्टाने यही पत्थर। तो चलिए वर्ल्ड रॉक डे को लेकर कर लेते हैं थोड़ी और बातें। चट्टाने भले ही किसी को बहुत ज़रूरी ना लगे है ना तो फिर हर इंसान के पास चट्टानों की इम्पोर्टेंस हो ये तो ज़रूरी नहीं है, है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान के लिए ये जो चट्टाने हैं ये जो पत्थरें हैं ये महत्वपूर्ण नहीं भी तो हो सकती हैं लेकिन वह इंसान जाति के अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी साबित हुई है। उनका उपयोग पूरे युगों में किया गया है और उन्होंने मानव जाति को आगे बढ़ने में मदद भी की है।

पाषाण युग में चट्टानों का उपयोग औजार और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। तब से चट्टानों और उनमें पाए जाने वाले खनिजों और धातुओं ने हर क्षेत्र और क्षेत्र में मनुष्यों की मदद ही तो की है। तो चलिए, मदद तो मदद, लेकिन इसके अलावा खूबसूरती के बारे में भी बात होगी, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी कई सारी खूबसूरत ऐतिहासिक किलों के बारे में, इमारतों के बारे में भी बात होगी, क्योंकि आज उन्हीं चट्टानों को लेकर, उन्हीं पत्थरों को लेकर ही तो बात हो रही है। और बात इसीलिए हो रही है क्योंकि वर्ल्ड रॉक डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जा रहा है।

चट्टाने पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा और प्रामाणिक अभिलेख है। भूवैज्ञानिक अर्थात जियोलॉजिस्ट इनके अध्ययन से करोड़ों साल पुरानी जलवायु और जीवों के बारे में जानते हैं। दुनिया भर में चट्टानों को तराश कर कई ऐतिहासिक स्मारक और मंदिर बनाए गए हैं। भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों जैसे कि भीमबेटका की प्राचीन गुफाएं या फिर एलोरा के कैलाश मंदिर इसके बेहतरीन उदाहरण के तौर पर हमारे सामने हैं। आज चट्टानें मिट्टी का निर्माण करती हैं और जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। पत्थरों खनिजों से ही हमें धातु जैसे कि लोहा सोना तांबा और ईंधन के तौर पर कोयला या फिर पेट्रोलियम प्राप्त होता है जिन पर आज का आधुनिक उद्योग टिका हुआ है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों में शामिल मुख्य रॉक आर्ट और रॉक कट पत्थर को तराश कर बनाई गई संरचनाएं अपनी अद्भुत प्राचीनता के लिए जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका और महाराष्ट्र के अजंता एलोरा इसके प्रमुख उदाहरण के तौर पर हमारे सामने हैं। आज भीमबेटका की बात करूंगी, इसके अलावा अजंता गुफाओं की बात भी होगी, लेकिन फिलहाल समय हो चला है 9:45। बातों और गीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं।

नौ बजकर 52 मिनट बात हो रही है बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा में वर्ल्ड रॉक डे को लेकर, और बात कर रही थी कुछ ऐसे चट्टानों को लेकर, कुछ ऐसे नक्काशियों को लेकर जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जगह दी गई थी। तो भीमबेटका के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका, इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ लगभग 750 रॉक शेल्टर यानी कि चट्टानी गुफाएं हैं। इनमें 500 से अधिक गुफाओं में पाषाण काल के शैलचित्र और नक्काशी मौजूद हैं, जो कि लगभग 30,000 से भी पुराने

है ये कहा जाता है। और ये चित्र तत्कालीन मानव जीवन, शिकार, नृत्य और जानवरों को दर्शाती हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा गुफाओं की बात करें या फिर एलिफेंटा गुफाओं की बात ही कर लें, इन्हें भी यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो जो नक्काशियां हैं, जी हाँ, जिन्हें पत्थरों पर उतारा गया था, वो कोई साधारण सी बात तो नहीं है ना। और यही असाधारण सी चीज़ बयां कर देती है बहुत कुछ। जी हाँ, इंसानी जीवन के साथ साथ पशु पक्षियों के जीवन के इतिहास को भी दर्शाते हैं यही पत्थर, जिन्हें कई बार हम देखकर भी अनदेखा करके चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि दिखने में साधारण से पत्थर, और इसीलिए यही साधारण से पत्थर को हम देखकर शायद कभी कभार इतने इम्पोर्टेंस, इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन उसके बाद जब इन्हीं असाधारण से पत्थरों के बारे में हमें पता चलता है, तब इनकी अहमियत हमारे पास और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आज के दिन को लेकर हो रही थी बात, क्योंकि वर्ल्ड रॉक डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। और रॉक का, पत्थरों का, चट्टानों का आखिर कितना महत्व है, कितना ज़रूरी है इंसानी जीवन के लिए, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तब हमें बहुत सी बातें हमें पता चलती हैं, हम जान पाते हैं। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करते हैं समाप्त, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी जो है वो बता रही है कि आज के इस कार्यक्रम को करना होगा यहीं पर समाप्त, क्योंकि 9:55 होने को हैं। और कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आप सभी के लिए छोड़े जाना चाहती हूँ। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा को दीजिएगा इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिल रही हूँ बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर, समय रहेगा ठीक दोपहर के 12 बजे दोबारा आपसे बात होगी, लेकर आऊँगी दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। तब तक के लिए ट्यून रहेगा चैनल संजीता के साथ, और सुन रहे थे आप बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा को। आरती मुखर्जी की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है।

0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक, नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
2: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module where astronauts live and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bindale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shreshta Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. Prime Minister Narendra Modi today said that when all-round development ensures positive transformation in the lives of every citizen, it gives fresh momentum to the nation's progress. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said, "The country is continuously working to further strengthen India's capabilities with this inspiring spirit." The quote

मीडियम एप 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल है। सामिन का नाम इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10:15:33 हो रहे हैं। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, जो वाबस्ता हुआ अफसाने कहाँ जाते। जी हाँ सामिन कराम, हमारा दिल भी आपकी मोहब्बत के कई अफसानों से वाबस्ता है। यही वजह है कि रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त आफ्ताब आलम। आप तमामी सामिन को आफ्ताब आलम का पुरखलुस आदाब। तो आइए दोस्तों, रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की इब्तदा आईना से करते हैं। सामिन कराम, रोजगार सेवा पोर्टल हुकूमत मगरिब बंगाल का एक अहम पोर्टल है जो कि PBSSD यानी पश्चिम बंगो सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट के तहत चलता है। दोस्तों, रोजगार सेवा पोर्टल रोजगार और हुनरमंदों के दरमियान राबिता कायम करने का एक बेहतरीन जरिया है। इस पोर्टल के मकासिद और इसकी खसूसियात के मुतल्लिक गर बातें की जाएं तो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना, तरबियत याफ्ता वो हुनरमंद नौजवानों को सनत व कंपनियों के साथ जोड़ना, जॉब फेयर्स में शिरकत कराना और बेहतर और मुनासिब नौकरियां तलाश करना, साथ ही साथ कंपनियों के लिए तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों व हुनरमंदों का डेटाबेस देखना, उम्मीदवारों का इंतखाब करना और जॉब की जरूरियात दर्ज कराना वगैरह मस्कूरा पोर्टल के मकासिद और इसकी खसूसियात हैं। सामिन कराम, इस पोर्टल के जरिए स्किल बेस्ड हायरिंग, इंडस्ट्री आउटरीच और प्रधानमंत्री नेशनल एयरनेसशिप मेला जैसे रोजगार हुआ करते हैं। सामिन कराम, इस पोर्टल में खुद को रजिस्टर करने के लिए सूबे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साइन अप क्लिक करना होगा और वहां अपना नाम

सेहरा को बहुत नाज है वीरानी पे अपनी, सेहरा को बहुत नाज है वीरानी पे अपनी, वाकिफ नहीं शायद मेरे उजड़े हुए घर से।

दोस्तों, अभी आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ख़ानदान फिल्म का नगमा समात फरमा रहे थे, जिसे मौसीकी से आरास्ता किया था रवि ने।

डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करने से ये डाइटिंग करने वालों के लिए भी नहायत ही बेहतरीन नाश्ता हो सकता है। दोस्तों, मखाना दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इसमें चिकनाई कम होने के बायस और मैग्नीशियम व पोटासियम की मौजूदगी के सबब ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। साथ ही साथ दिल के अमराज के खतरे को कम करता है और दिल के शरियानों को सेहतमंद बनाता है। दोस्तों, मखाना में ज़्यादा फाइबर होने के सबब निज़ाम हाजमा में बेहतरी बपा होती है, कब्ज़ दूर होता है, आंतों की सेहत में तेज़ी आती है। इसी तरह मखाना में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मकदार ज़्यादा होने की वजह से हड्डियों में मजबूती आती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आज़ाद रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, जिनको जवान रखते हैं और झुर्रियाँ भी ख़त्म करते हैं। सामिन कराम, मखाने में मौजूद मैग्नीशियम से आसाब को सुकून मिलता है और अच्छी नींद आती है। सामिन कराम, यूनानी और आयुर्वेदिक तिब में मखाना खासा अहमियत रखता है, क्योंकि ये मर्दाना जिनसी बीमारियों के इलाज और मुआलजा में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। साथ ही साथ यह ख्वातीन के बच्चेदानी की कमजोरी दूर करता है। जज्की के बाद ख्वातीन को इसका हलवा बनाकर खिलाने से सेहत में फौरी बेहतरी आती है। दोस्तों, मखाना रब्बे कायनात की बहुत ही मुफीद व नफा बख्श तख्लीक है। ये सोजिश कम करती है और जिस्म के कुव्वत मदाफत में इजाफा करती है। इसी तरह मखाना हामला और दूध पिलाने वाली ख्वातीन के लिए भी नहायत ही मुफीद व कारामद होता है। इसमें मौजूद आयरन, फोलेट और कैल्शियम खून की कमी दूर करते हैं और हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। सामिन कराम, गर्म मखाना के इस्तेमाल के ताल्लुक से बातें करें तो माहिरीन सेहत के मुताबिक इसका इस्तेमाल नहायत ही मुफीद व सूदमंद साबित होता है। अलगरस सामिन कराम, मखाना सस्ता, आसानी से दस्तियाब होने वाला और जायकामंद तख्लीक कुदरत है, जिसके इस्तेमाल से हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सामिन कराम, अभी आप हफ्त रोज़ा प्रोग्राम तख्लीक़ कुदरत के तहत मखाना के ताल्लुक से हमारी बातें समाप्त फरमा रहे थी।

चुरी घड़ी में बज चुके हैं 12। आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर तथा 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शुरू करते हैं दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि, और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। सुरभि कार्यक्रम के पहले पायदान की ओर रुख करते हैं, जिसका नाम है चर्चा है, और चर्चा है में आज का हमारा विषय है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक कृषि दशक संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक कार्यक्रम है। इसे 20 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के पारिवारिक किसानों को सशक्त बनाना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन में मदद करना था। वैश्विक कार्य योजना प्रमुख बिंदुओं के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है पारिवारिक कृषि के समर्थन के लिए अनुकूल और मजबूत सरकारी नीतियां तैयार करना। इसके बाद कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके अलावा महिला किसानों को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। पारिवारिक किसानों के संगठनों फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता का निर्माण करना। आर्थिक समावेशन की अगर बात करें तो छोटे से सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समावेशन सुनिश्चित करना। इसके अलावा जैविक विविधता और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन टिकाऊ कृषि पद्धतियों का प्रचार प्रसार करना। पारिवारिक कृषि के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक आयामों को एक साथ जोड़ना। पारिवारिक कृषि में कृषि वानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं, जिनका प्रबंधन और संचालन मुख्य रूप से एक परिवार द्वारा किया जाता है और जिनमें अधिकांश श्रम परिवार के सदस्यों, जिनमें महिला और पुरुष दोनों द्वारा ही प्रदान किया जाता है। पारिवारिक किसान वैश्विक कृषि भूमि के 70-80% हिस्से पर खेती करते हैं और मूल्य के हिसाब से दुनिया का 80% से अधिक भोजन पैदा करते हैं। चर्चा है आज यह तक बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग को लेकर। रुख करेंगे फिल्मी गीत की ओर और उसके बाद अगले पायदान की ओर रुख करेंगे, जिसका नाम है पहल।

12:10 है, स्टूडियो की घड़ी का समय और इस वक्त आप सुन रहे हैं दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और सुरभि कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर रुख करने का समय हो चला है, जिसका नाम है पहल। पहल में आज का हमारा विषय है रोजगार सेवा पोर्टल। रोजगार सेवा पोर्टल जिसे रोजगार संगम या फिर सेवा योजन पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए चलाई जाने वाली वेबसाइट है। यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक मंच पर लाती है। पंजीकरण और नवीनीकरण के बारे में अगर कहा जाए तो युवा अपनी शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर पोर्टल पर मुफ्त पंजीकरण कर सकते हैं। रोजगार मेले के माध्यम से समय समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां सीधे इंटरव्यू का अवसर भी मिलता है। करियर काउंसलिंग की अगर बात करें तो उम्मीदवारों को उनकी रुचि और कौशल के अनुसार सही करियर चुनने में ऑनलाइन करियर परामर्श दिया जाता है। जॉब अलर्ट के बारे में अगर कहें तो पंजीकृत उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार नई नौकरियों और उससे जुड़ी जानकारी ईमेल और मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो भारत सरकार का नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पूरे देश में नौकरियों का सबसे बड़ा मंच है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करें तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योग्यता की मार्कशीट और प्रमाण पत्र के अलावा निवास प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है।

रोजगार सेवा पोर्टल, ये विषय था आज का हमारा। सुबह कार्यक्रम के अगले पायदान में हम बात कर रहे थे जिसका नाम है पहल। पहल में आज हम रोजगार सेवा पोर्टल को लेकर कर रहे थे बात। सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत अब रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं।

0: 12:20 होने को है। संगे आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा के और सुन रहे थे दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है, लेकिन जाने से पहले लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अलग अलग से एक गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिए इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिल रहे हूँ बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर, तब तक के लिए ट्यून रहेगा चैनल संचिता के साथ और सुनते रहिएगा लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

0: प्रदेश और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय

0: दिया तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने की 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्ध पोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति

0: के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
2: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
3: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এখন শুনবেন খেয়াল শিল্পী শাশ্বতী বাগচি, রাগ সিদ্ধ সারঙ্গ, তবলায় কিংশুক মুখোপাধ্যায়, হারমোনিয়ামে হিরণময় মিত্র। শুনবেন খেয়াল

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধিবেশন। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने वाली पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विवादित पुस्तकों में पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दों का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमन कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट

श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से जारी संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर जोर दिया गया। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लादिस्लाव बार्तोसिजेस्की और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर सचिव माइकल बरोंस्की से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वियतनाम के फूक्वेक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है। शिवड़ी घड़ी में 5:21:02 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का। उर्वशी के झोरखा में आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के पांडव के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका।

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं और प्राचीन मंदिरों के साथ साथ महाभारत काल से जुड़े अनेक पवित्र स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड की यात्रा की, इसलिए यहाँ के अनेक स्थान पांडवों की स्मृतियों से जुड़े हुए माने जाते हैं। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडव प्रसन्न नहीं थे। अपने ही परिजनों और गुरुओं की मृत्यु के कारण वे दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से क्षमा मांगने के कारण लिए हिमालय पहुंचे। भगवान शिव इनसे रुष्ट होकर विभिन्न स्थानों पर छिप गए, लेकिन अंततः पांडवों की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। इसी कथा से पंच केदार की स्थापना की मान्यता जुड़ी है। उत्तराखंड के पांच प्रसिद्ध शिव मंदिर केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर को

केदार कहा जाता है। माना जाता है कि पांडवों ने इन स्थानों पर भगवान शिव की आराधना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित माना गांव भारत का अंतिम गांव माना जाता है। मान्यता है कि यहीं से पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा, जिसे महाप्रस्थान या सर्वारोहण कहा जाता है, आरंभ की थी। माना गांव के पास स्थित भीम पुल सरस्वती नदी पर बना एक विशाल प्राकृतिक शिला पुल है। लोक मान्यता है कि भीम ने द्रौपदी को नदी पार कराने के लिए शिला रखी थी। माना गांव में स्थित ब्यास गुफा के बारे में मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने यही महाभारत की रचना की। पास की गणेश गुफा में भगवान गणेश ने वेदव्यास द्वारा बोले गए श्लोकों को लिखा। बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित पांडुकेश्वर का संबंध पांडवों के पिता राजा पांडु से माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ स्थित योगध्यान बद्री मंदिर अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध है। देहरादून जिले का लाखा मंडल महाभारत की लाक्षा गृह कथा से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाख का महल बनवाया था, लेकिन विदुर की योजना से पांडव गुप्त सुरंग के रास्ते सुरक्षित निकल गए। पांडव हिमालय के दुर्गम मार्ग से स्वर्गारोहिणी की ओर बढ़े। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक करके गिर पड़े। अंत में केवल युधिष्ठिर अपने धर्म और सत्य के कारण स्वर्ग तक पहुंचे। उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रभाव की अगर बात करें तो आज भी उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में पांडव नृत्य और पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। इन लोक परंपराओं के माध्यम से महाभारत की कथाओं और पांडवों के आदर्शों को जीवित रखा गया है। उत्तराखंड और पांडवों का संबंध भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण भाग है। केदारनाथ, माणागांव, भीमपुल, पांडुकेश्वर, ब्यास गुफा और लाखामंडल जैसे स्थान आज भी पांडवों की महान गाथा की याद दिलाते हैं। यह स्थल हमें धर्म, सत्य, तपस्या और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। इसलिए उत्तराखंड केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे झरोखा में उत्तराखंड पांडव।

और अब फिल्मी नगमे आई सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पारसमणि से गीत। गीतकार हैं असद भोपाली और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आइए उर्वशी कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं, इसे हमने लिया है फिल्म रात और दिन से। गायक कलाकार है मुकेश, गीत रखा है, गीत लिखा है असरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की।

0: भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। In women's cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one-off test against host England at the Lord's. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lord's. Chasing a target of 457 runs, the hosts were all out for 186 in their second innings before lunch on day 4. For India, Sneh Rana took 4 wickets, while Sayali Sadghare, Kranti Gaur and Deepthi Sharma bagged 2 wickets each. India had declared the second innings at 341 for 7 yesterday at the stroke of tea, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at the Lord's. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. The 63-kilometre, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway, with India's second longest elevated corridor, is also the country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. The expressway is designed for speeds of up to 120 kilometres per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 45 minutes. Supreme Court today directed the Special Investigation Team or SIT constituted by the UP government to submit a status report on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. The court also issued notice to the Union Government, the UP government and the Sri Ram Janmabhoomi Tir Kshetra Trust on petitions seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joy Malia Bagchi and V. Mohan heard the petitions. The Supreme Court today stayed a Madras High Court order which directed the Tamil Nadu government to ensure that no cow or calf is slaughtered in the state. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta passed the order while hearing a plea filed by the state government challenging a May 27 order of the High Court. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The ministry said the total imports, merchandise and services combined for June this year is estimated at $88.76 billion, registering a positive growth of over 26% as compared to the same month last year. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, will begin tomorrow at Bharat Mandapam in New Delhi. The four-day event will showcase India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability,

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 6:10:31 हुए हैं। वक्त हो रहा है वार्ता का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका। आज हमारी वार्ता का विषय है प्लास्टिक से पेपर बैग बेहतर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने मानव जीवन को प्रभावित किया है। इन समस्याओं का एक प्रमुख कारण प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग है। बाजारों में सामान ले जाने के लिए लंबे समय तक प्लास्टिक की थैलियों का व्यापक उपयोग होता रहा, लेकिन इनके दुष्प्रभाव सामने आने के बाद पेपर बैग यानी कागज के थैले एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरे हैं। पेपर बैग पर्यावरण के अनुकूल, पुनर्चक्रण योग्य और अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं।

प्लास्टिक बैग पेट्रोलियम आधारित रसायनों से बनाए जाते हैं। ये हल्के, सस्ते और पानी से सुरक्षित होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत बढ़ गया। लेकिन अधिकांश प्लास्टिक बैग आसानी से नष्ट नहीं होते और वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं।

पेपरबैक कागज से बनाए जाते हैं। इन्हें पुनर्चक्रित कागज या नए कागज से तैयार किया जा सकता है। उपयोग के बाद इन्हें पुनर्चक्रित करना आसान होता है और ये प्राकृतिक रूप से समय के साथ विघटित हो जाते हैं।

प्लास्टिक बैग मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। इन्हें नष्ट होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। कई बार पशु इन्हें भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। नालियों में फंसकर ये जल भराव की समस्या बढ़ाते हैं। प्लास्टिक कचरा नदियों और समुद्रों तक पहुंचकर जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है।

पेपर बैग पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं। यह प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं, इन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है। इनसे प्लास्टिक प्रदूषण कम होता है। ये स्वच्छ और आकर्षक होते हैं। इन पर आसानी से छपाई की जा सकती है। इनके उपयोग से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है।

पेपर बैग के कई लाभ हैं, लेकिन इन्हें बनाने में कागज, पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय केवल प्लास्टिक की जगह पेपर का अधिक उपयोग करना ही नहीं, बल्कि जहां संभव हो बार बार उपयोग किए जाने सकने वाले कपड़े, कॉटन या जूट के थैलों का उपयोग करना भी है। इससे संसाधनों की बचत और कचरे में कमी आती है।

हमें खरीदारी करते समय अपना थैला साथ ले जाने की आदत डालनी चाहिए। दुकानदारों को भी पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने चाहिए। विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं और सरकार द्वारा लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और टिकाऊ विकल्पों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।

प्लास्टिक प्रदूषण आज मानव और प्रकृति दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। इस समस्या को कम करने के लिए पेपर बैग उपयोग एक उपयोगी विकल्प है, क्योंकि वे प्लास्टिक की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं। साथ ही पुनः उपयोग किए जा सकने वाले कपड़े या जूट के थैलों का अधिक से अधिक उपयोग प्रयोग करना और एक

उपयोग प्लास्टिक से बचना सबसे प्रभावी समाधान है। यदि प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी से पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था प्लास्टिक से पेपर बैग बेहतर। वार्ता यहीं तक, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

आज सुनते हैं गीत और गजल का कार्यक्रम गुलगुल सन। सबसे पहले गुलाम अली की आवाज में सुनते हैं ये गजल।

लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए बहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

दो शेर नए हैं, अहमद फराज साहब के नहीं है। लेकिन रदीफ और काफिया एक ही है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अहमद फराज साहब ने पहले गजल लिखी है या उन शायर ने।

गुलगुलसन कार्यक्रम यहीं तक। अब आपके दोस्त रोशन मुरारका को आज्ञा दीजिए, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. A Delhi court today convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others for the killing of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted five of them. The court found Tahir Hussain guilty under the charges of promoting enmity, rioting, assault, criminal force and murder. The case pertains to an FIR registered at Dayalpur Police Station on the complaint of Ravinder Kumar, father of Ankit Sharma. In his complaint, Ravinder Kumar alleged that his son was murdered by the then AAP councillor Hussain and others. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The ministry said the total imports, merchandise and services combined for June this year is estimated at $88.76 billion, registering a positive growth of over 26% as compared to the same month last year. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. The 63-kilometre six-lane Lucknow-Kanpur Expressway, with India's second longest elevated corridor, is also the country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. The expressway is designed for speeds of up to 120 kilometres per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 45 minutes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US trade representative Jamison Greer in New Delhi last month in this regard. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. In Tamil Nadu, six people were killed in a bus accident at Melur near Madurai today. The incident occurred at Kottambatti Road, where two buses collided head-on. Seven passengers who suffered severe injuries and 15 passengers who sustained minor injuries were admitted to the hospital. The police have ordered an inquiry into the incident. In a tragic incident in Maharashtra's Pune district, three women pilgrims of the revered Ashadi Wari were killed and seven others were injured after a truck rammed through a group of pilgrims walking on Saswad Jejuri Road this morning. According to preliminary information, the driver of the truck carrying workaries from Nanded district lost control of the vehicle near Bhelsar Toll Plaza and ran over multiple workaries who were undertaking the pilgrimage by foot from Sangli. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsized incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India by Vietnam Airlines flight this evening. The Indian Embassy in Vietnam in a social media post said the flight is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time.

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 7:31:04 हुए हैं। वक्त है पत्रिका कार्यक्रम दर्पण का। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। सबसे पहले एक नजर संयुक्त राष्ट्र का पारिवारिक खेती दशक। कृषि विश्व की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का आधार है। दुनिया भर में करोड़ों किसान अपने परिवार के साथ मिलकर खेती करते हैं। ऐसी खेती को पारिवारिक खेती यानी फैमिली फार्मिंग कहा जाता है। पारिवारिक खेती ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 से 2028 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक खेती दशक घोषित किया। पारिवारिक खेती वह कृषि व्यवस्था है जिसमें खेती का संचालन मुख्य रूप से परिवार के सदस्य करते हैं। भूमि का प्रबंधन, फसल उत्पादन, पशुपालन और अन्य कृषि कार्य परिवार के सहयोग से किए जाते हैं। भारत सहित अनेक देशों में अधिकांश किसान इसी प्रकार की खेती करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दशक की घोषणा का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक किसानों की स्थिति को मजबूत करना और टिकायु कृषि को बढ़ावा देना है। अगर इनके उद्देश्य की बात करें तो इनके उद्देश्य हैं खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना, छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं की कृषि में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में किसानों की सहायता करना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं तथा परिवार के सहयोग से खेती करते हैं। पारिवारिक खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह खाद्यान्न उत्पादन, डेयरी, बागवानी, पशुपालन और जैविक खेती में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पारिवारिक खेती को मजबूत बनाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर कार्य करना चाहिए। किसानों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई सुविधाएं, सस्ती ऋण व्यवस्था, फसल बीमा, कृषि परीक्षण और उचित बाजार उपलब्ध कराना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र का पारिवारिक खेती दशक किसानों के महत्व को वैश्विक स्तर पर स्वीकार करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों के जीवन स्तर में सुधार, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान और समाज मिलकर कार्य करें तो पारिवारिक खेती अधिक सशक्त बनेगी और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ये थी एक नजर।

आइए वक्त हो रहा है कार्यक्रम साहित्य सरिता का, जो हमारा साप्ताहिक पुस्तक समीक्षा और साहित्य पर आधारित कार्यक्रम है। आज हम बातें करेंगे डॉक्टर सुनीता जैन के बारे में। हिंदी साहित्य में अनेक ऐसी लेखिकाएं हुई हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं को नई दिशा दी है। डॉक्टर सुनीता जैन ऐसी ही प्रतिष्ठित साहित्यकार थी। वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की प्रसिद्ध कवियत्री, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा अनुवादक थी। उन्होंने अपने साहित्य में स्त्री परिवार, परिवार, स्त्री जीवन, परिवार, प्रेम, अकेलापन, सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संबंधों का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया। उनका साहित्य भारतीय जीवन मूल्यों और आधुनिक चिंतन का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। डॉक्टर सुनीता जैन का जन्म 13 जुलाई 1941 को अम्बाला, हरियाणा में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी साहित्य में विशेषज्ञता हासिल की। वे लंबे समय तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन से जुड़ी रहीं। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने निरंतर लेखन किया और हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्य रचा।

डॉक्टर सुनीता जैन बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध और अनुवाद जैसे अनेक विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में भाषा की सरलता, भावों की गहराई और जीवन की वास्तविकता का सुंदर समन्वय मिलता है। उनके साहित्य में नारी की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, पारिवारिक रिश्तों की जटिलता, बदलते सामाजिक मूल्य, प्रेम, करुणा और मानवीय संवेदनाएं प्रमुख विषय हैं। वे मानती थी कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को सोचने और बदलने की प्रेरणा देने वाला माध्यम भी है। उनकी रचनाओं में महिलाओं के संघर्ष, आत्मविश्वास और स्वतंत्र व्यक्तित्व का सशक्त चित्रण मिलता है। उनके साहित्य में प्रेम, करुणा, अकेलापन, परिवार और सामाजिक संबंधों का गहरा विश्लेषण मिलता है।

डॉक्टर सुनीता जी की भाषा सहज प्रभावपूर्ण भावपूर्ण है जिसे पाठक आसानी से जुड़ जाते हैं। उन्होंने परंपरा और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनके समान दक्षता के साथ लेखन करना विशिष्ट पहचान थी। डॉक्टर सुनीता जैन ने अनेक कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध लिखे। उनकी रचनाओं में स्त्री मन की गहरी अनुभूति, सामाजिक यथार्थ और जीवन दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर सुनीता जैन को साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय और साहित्यिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए। डॉक्टर सुनीता जैन ने हिंदी साहित्य को नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं, उनके अधिकारों और आत्मसम्मान को साहित्य का महत्वपूर्ण विषय बनाया। उनकी रचनाएं आज भी विश्वविद्यालयों और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने अनुवाद के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य भी किया।

डॉक्टर सुजिता जैन भारतीय साहित्य के उन विशिष्ट रचनाकारों में हैं जिनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका साहित्य संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों और सामाजिक चेतना का जीवन दस्तावेज है। उन्होंने अपने लेखन से सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ साथ परिवर्तन का सशक्त माध्यम भी है। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और हिंदी साहित्य में उनका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य सरिता, जो हमारा साप्ताहिक पुस्तक समीक्षा और साहित्य पर आधारित कार्यक्रम होता है। आज हम बातें कर रहे थे डॉक्टर सुनीता जैन के बारे में। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं नरेंद्र चंचल के आवाज में नगमा, गीत लिखा है चमन लाहिरी ने और संगीत श्याम जी घनश्याम जी का है।

आयुषन दाग लगी जिसे हमने लिया फिल्म, वो कौन थी से कलाकार है लता मंगेशकर, गीतकार राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन।

अरे चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, और इस गीत को सुनने से साथ ही आपके दोस्त रोशन मराका को आज्ञा भी दीजिए। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म सदमा से। गायक कलाकार हैं सुरेश वाटकर, गीतकार गुलजार और संगीतकार इलाया राजा।

0: একটু পরেই খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73

0: सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Dismisses

0: has traditionally maintained strong relations with Iran, Israel, and the countries in West Asia. So how challenging is it going to be for New Delhi to maintain this strategic balance during the period of intense conflict?
1: I think it's a very big challenge for India because there are a number of reasons why such an escalation of the conflict would hurt our interests. I referred earlier to the presence of a large expatriate population. We have a big diaspora there. And of course, people always come first in diplomacy. So we have to protect the interests of our diaspora. Then, of course, there are issues like the supply of food oil, the supplies of LNG, then rock phosphate, which we need for our agriculture, our bilateral trade with all the Gulf countries. All this suffers in a very big way with any escalation of the conflict. Then, of course, there is this other larger global question that, you know, the disruption of peace anywhere becomes a threat to peace everywhere. We could have a situation where things go out of control. There is, again, an escalation involving more and more countries. So it is always better to try and cap the conflict, to try and end the conflict. And this is what India is attempting to do. Of course, our efforts are constrained because of factors which are beyond control. The US-Iran hostility on the one hand, and then again, Israel's hostility with Iran on the other. These are very serious complications. And because of them, the situation is becoming increasingly more dangerous. But nonetheless, we are very hopeful that both sides can be brought to the table, and we are fully encouraging the countries which are trying to mediate, such as, for instance, Qatar and Oman. We want them to continue their efforts, and we do want that the United States and Iran sit down at the diplomatic table and try and resolve this conflict.
0: Also, I would like to understand from you that Prime Minister Narendra Modi concluded his three-nation tour last Saturday, and he visited Indonesia, Australia and New Zealand, and the countries where he visited, his trips were very successful. He had deep engagements with the leaders over there. So in the current geopolitical situation, how do you see India's diplomacy with the world, with the other countries?
1: India's diplomacy is based on the principle of strategic autonomy and multi-alignment. We do not want to align ourselves with any one particular side. We want to have good relations all around. And this is why Prime Minister Modi has been visiting a whole host of countries. And the effort on his part is to strengthen our relations with all these countries. Now, since you referred to his recent tour of Indonesia, Australia and New Zealand, let me mention that this is a very important arc of trust. And this arc is in a very important region, the Indo-Pacific region, where India's interests are being impacted adversely by Chinese expansionism. But at the same time, the interests of all these countries in the region, including, of course, Australia, Indonesia, and New Zealand, they are also being adversely impacted by Chinese policies. China has become a threat to supply chains. China wants to monopolize the resources that are available for its own good. But then that has an adverse impact on other countries. And that's why it's important that India strengthens its relations with the countries of the region, which is what we are trying to do. And it's not just in the eastern part of the Indo-Pacific region, but also in the western part. So India's relations with all the countries of the Indo-Pacific region are aimed at strengthening not only our bilateral relations, but also the maritime aspect, because we are keen to collaborate with all these countries in strengthening our cooperation in the maritime domain so that we are able to ward off any threats towards supply chains that are arising.
0: Ambassador Dayal, you gave us a very lucid explanation of the ongoing conflict, and you delve deep into the reasons behind it and the future that is going to be from this conflict henceforth. Thank you so much for sparing your valuable time and joining us for Spotlight tonight.
1: Thank you, Deeksha. Thank you so much for inviting.
2: You were listening to a discussion on West Asia crisis, evolving situation and global impact. The participants were Prabhu Dayal, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। अच्छा नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद मैडम।
3: श्रोता, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूले। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सचेंजल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
4: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको पांच बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं, जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहां पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
3: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
5: हाँ जी, नमस्कार मैम।
3: नमस्कार
5: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
4: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
5: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान देना दे सकता है सर।
4: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे

0: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
1: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में हैं। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी बढ़ता एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके, ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए, ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
0: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है, और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर। तो
1: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
0: जी।
1: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है, तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित, हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाए, लूज सैंड ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसा, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूँ तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूँ तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके, ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हज़ार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए, जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का, जैसे सरकार की तरफ से कुछ, जैसे कैसे अभी घर सूर्य घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें, या फिर अपने कॉलोनी में जैसे सर अभी बता रहे थे इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
1: अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी, अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग, और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
0: जी।
1: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे

0: बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी, करीब 500 घर हैं, वहाँ कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं, तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है, बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: है।
0: जी तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बानस का अठा कर एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं, तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये भी प्रेरणा
0: है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है, और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर, सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पर, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया। फिर मैंने सैंड का, सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो, ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है, या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
1: जी,
0: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। लॉन्ग आंसर, मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है, वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचे

0: कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: इसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
2: नमस्कार
1: रमाकांत जी।
0: नमस्कार
2: रमाकांत
0: जी। नमस्ते।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड टूट दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
0: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनक लता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से, जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश, अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
1: हूँ। भविष्य के लिए निवेश है,
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है, जैसे हम पिगी बैंक में अपना एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है,
1: हर बूंद कीमती है।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं, नंबर है 2331048 2371711 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
0: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मानसून से पहले एक बार सफाई कर दिए, ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार होए, तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: स्तर ऊपर
0: हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे जीएसजेबी जल संचय जन भागीदारी

0: 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ? अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे वहां की जनता ने, वहां के क्राउड ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के एनजीओज ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं,
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोगों
1: की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है
1: जी,
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं, क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहाँ डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी, अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग इससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छा रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली चीज होना तो इसको करा कर सकते हैं।
0: विवेक जी,

बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रास हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं, उसी तरह जल शक्ति केंद्रास हैं।

0: सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन के DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले है सरकार की ओर से की जा रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाएं, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: Absolutely. कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা, খবর পড়ছি বর্ণালী সিংহ। এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আজ স্পেনে সেদেশের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অর্থনীতি, ব্যবসা ও বাণিজ্যমন্ত্রী কার্লোস কুয়েরপো কাবালেরোর সঙ্গে এক বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত স্পেন অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ভারত আমেরিকা বাণিজ্য আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছেছে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যে খবর প্রচারিত হচ্ছে, শ্রী গোয়েল তাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অসত্য ও বিভ্রান্তিকর বলে খারিজ করে দিয়েছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবার্তা জারি করে বলেছেন, প্রয়োজনে আমেরিকার কৌশলগতভাবে

0: And now, dear listeners, our musical journey finally reaches its destination for tonight. Tonight, we revisited the extraordinary life of Tina Turner, a woman who transformed heartbreak into hope, obstacles into opportunities, and ordinary songs into timeless anthems. Her story reminds us that resilience is not about never failing. It's about rising with greater dignity every single time. As we prepare to conclude our day, perhaps we carry one thought with us. The strongest people are not always those who have lived the easiest lives. Often they are the ones who have quietly chosen hope when giving up seemed easier. May we all possess a little of Tina Turner's courage. Thank you, dear listeners, for making Resonance for Yesteryears a part of your evening, your night. Until we meet again with another unforgettable musical journey through the golden decades of popular music, this is your studio friend wishing you a peaceful night, good health, and melodies that continue to inspire long after the music fades. Good night, take care, and keep listening to the Sanchayata channel of Akashvani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters corresponding 1008 kilohertz. Please stand by for the news to be relayed shortly from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़

0: डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at

उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ वो मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।